0: the radio,
1: web,
0: and mobile app.
1: Metro Plus.
0: Metro Plus, your connect.
1: Your connect.
2: MPF offsetting has been abolished. From May 1st, 2025, employers' mandatory contributions can no longer be used to offset the post-transition portion of employee severance payment or long service payment. But employers need not worry. The government's 25-year subsidy scheme is in place to share employer expenses. Check it out. Abolition of offsetting is in effect. For details, visit www.op.labour.gov.hk.
3: It's my
4: Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on Life.
5: Life is for the living. You have to make the most of it.
4: On Family.
5: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
4: Life with drugs. No life at all.
6: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
7: Namaste, sat sri akal, salam, kiddaan ji, sare vadiya, appa ji, bahut vadiya. Aaj hai 17 July 2026. Aadha saal nikal gaya, aise hi dekhte, bolte. तो जी आज हमारे पास है 1 2 3 4 अनाउंसमेंट, तो मैं 4 अनाउंसमेंट सुना के मैं खिसक लूंगा और आपके इतने सारे नॉन स्टॉप गाने लगा दूंगा, ठीक है? मेरी मधुर आवाज जितनी कम सुनो उतना ही बेहतर है. एनीवेज शुरू करते हैं जी हमारा शो विद आवर फर्स्ट अनाउंसमेंट. ये है जी रिसीव रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग. हांगकांग में महिलाओं में सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है. रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है. अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है और सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है तो रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग जरूर करवाइए. बहुत सी महिलाएं जिनको HPV वायरस है या कैंसर शुरुआती स्टेज में है उनको कोई लक्षण नहीं दिखते. याद रखें, चाहे कोई लक्षण ना हो, HPV वैक्सीन लगा हो या मेनोपॉज हो चुका हो, तब भी स्क्रीनिंग करवानी बहुत जरूरी है. स्क्रीनिंग करवाने के लिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स, वुमेन वेलनेस सैटेलाइट, फैमिली डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या NGOs के पास जा सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग के लिए कॉल कीजिए 3166-6631. जनवरी 2026 से वुमेन वेलनेस सैटेलाइट में HPV सेल्फ सैंपलिंग की सुविधा शुरू हो गई है. हांगकांग आइलैंड में जो नंबर है वो आप कर सकते हैं जी 2855-1333. टाउन में है 2855-1222. न्यू टेरिटरीज में है 2851-1722. ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं www.cervicalscreening.gov.hk. अपना ख्याल रखो, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ. ओके, आते हैं जी हमारे पहले गाने पर. दिस इज रिक्वेस्टेड बाय रवि एंड हरजीत. जरा मैं मैसेज देख लूं अब कहां गया. हाँ जी, सो दिस इज रिक्वेस्टेड बाय रवि एंड हरजीत. गाने का नाम है जी गल्ला प्यार दिया और इसको गाया है हरजीत आलम ने. Dedicated to Tharminder XXX. All right, enjoy the song.

All right, guys, welcome back. आते हैं जी हमारे अगले अनाउंसमेंट पर. दिस इज रिसीव कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग. आज ही कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो. हांगकांग में अंतर का कैंसर बहुत कॉमन है. रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको जल्दी पकड़ सकते हो और रिस्क काफ़ी कम हो जाता है. साथ में हेल्थी लाइफस्टाइल भी अपनाओ. शुरुआती स्टेज में इस कैंसर के कोई लक्षण नहीं दिखते, इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है. 50 से 75 साल के हांगकांग रेसिडेंट्स जो अभी ठीक हैं उनके लिए स्क्रीनिंग फ्री हो सकती है. अगर रिजल्ट नॉर्मल आए तो हर 2 साल बाद फिर स्क्रीनिंग ज़रूर करवाओ. ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.colonscreen.gov.hk. हेल्दी रहने के लिए आप रोज़ एक्सरसाइज करो, दिन में 2 बार फ्रूट और 3 बार सब्जी खाओ, अपना वेट हेल्दी रखो, स्मोकिंग और शराब छोड़ दो, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो. आज ही स्क्रीनिंग करवाओ. ओके, एंड आवर नेक्स्ट सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय रेमी, एंड द सॉन्ग इज कहा गया जी, कैलाबूज़.

ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज जॉब फेयर टू बी हेल्ड ऑन 22nd of July 2026। लेबर डिपार्टमेंट एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है। तारीख है 22 जुलाई 2026, दिन है वेंसडे, बुधवार। टाइम दोपहर 12:30 से 12:30 बजे से 4:30 बजे तक। जगह है खालून वेस्ट जॉब सेंटर। इस जॉब फेयर में 6 कंपनीज 110 से ज़्यादा अलग अलग जॉब्स ऑफर कर रही हैं, जैसे प्रॉपर्टी असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, कॉमीज, टेक्नीशियन, लाइफ गार्ड, रूम अटेंडेंट, मैकेनिकल फिटर और भी बहुत सी स्पॉट्स पोस्ट्स। ज़्यादातर जॉब्स में चाइनीज लैंग्वेज की ज़रूरत बहुत कम है। एम्प्लॉयर्स वहीं पर ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज करेंगे। फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस भी अवेलेबल है। इंटरेस्टेड हो तो पहले से रिजर्वेशन कर लो। कॉल कीजिए 2150-6397। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.jobs.gov.hk। मौका हाथ से मत जाने दो। हाँ जी, दैट्स इट। ओके, बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। गाना है जी बॉडीगार्ड बाय नवान संधू। एंजॉय द सॉन्ग।

ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। बढ़ते हैं जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर। ओ, जो पहला आई थिंक जो गाना रिक्वेस्ट किया था वो मनी ने रिक्वेस्ट किया था। आई एम नॉट श्योर कि मैंने बोला या नहीं, बट एनीवेज प्रीवियस सॉन्ग वाज रिक्वेस्टेड बाय मनी। ठीक है, बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर। आवर लास्ट अनाउंसमेंट इज प्रिवेंशन ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस। इस सीजन में अलर्ट रहो, फ्लू, कोविड-19 और सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं। अच्छी पर्सनल और घर की सफाई रखो, खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक ढक लो, हाथ को लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकेंड्स तक धो लो, बीमार फील हो तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से मिलो। गवर्नमेंट का 2025 और 26 फ्लू वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, हर साल वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर। एलिजिबल लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है। कोविड-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे केयर होम्स वाले, 65 साल के और उससे ज़्यादा बुजुर्ग, 50 से 64 साल के क्रॉनिक पेशेंट्स, इम्यूनिटी कमजोर लोग और प्रेग्नेंट महिला। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.chp.gov.hk। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ओके, ये जो गाना है इट्स रिक्वेस्टेड बाय एन अनोनिमस पर्सन और गाने का नाम है जी उडिका विच बाय अरमान बेदे। इंजॉय द सॉन्ग।

All right, guys, that's it for me for today. मैं लेता हूँ जी आप सबसे अलविदा, और बाकी जो गाने लगने वाले हैं वो नॉन स्टॉप लगेंगे. मेरी आवाज़ जितनी कम से उतना बेहतर है. ओ बाय द वे, जो जो फीफा वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं उन सबको बता दूँ, फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना एंड स्पेन फाइनल में है, एंड दे शुड बी प्लेइंग वेरी सून. देखो कौन जीतता है. वैसे आई लाइक अर्जेंटीना मोर. शुरू से मैं अर्जेंटीना का फैन रहा हूँ बिकॉज ऑफ डियागो माराडोना, तो उसकी वजह से आई हैव ऑलवेज बीन एन अर्जेंटीनियन फैन. मेसी ऑफ कोर्स, वो तो अभी करंट जो है वो फेमस है. एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे. होप द बेस्ट टीम विंस द फीफा वर्ल्ड कप. और The songs that are we're gonna play is Up to You by Danda Neoliwala, requested by Ankit Paul. Then we've got Rutba by Ghulam Abbas, requested by Bilal Khan. फिर आते हैं जी हम नवा मेरे जुबिन नौटियाल. This one is requested by Chloe Cam. Then we've got Gigi by Gulab Sidhu, requested by Mandeep. And then we've got Put Jamte, प्रेम टिलोदा गाना है. Requested by Amrit, and we've got One Call Away by Arjun Tilo, and this one is requested by Anam. Then we've got Eyes on Me by the late and great Sidhu Moosewala. This one is requested by Sonia Kaur. Then it's Jackpot by Chima Y, requested by Afai. Then we've got King by Shubh, requested by Bruno. Then Devil by Sidhu Moosewala, requested by Malik, and Levels by Sidhu Moosewala, requested by Chaudhary. All right, guys, that's it for tonight. Milte hain ji aapko next Friday, same time, same place. Tab tak ke liye ji, chill karo, tension na lo, te chadti kala chalo. Rab rakha, good night and goodbye.

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वही हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए?